कैसे मुझे मी ए आर रहमान अमिल राग कंग हदफ वाला वेनु मी लवे की ओनली वन मी लवैंग रागु नकै किंग हदफ वाला वे मी येलो कार्ड बैंड के एम मशहूर ए लवा मी लवा रिलीज कुरी इतिहास हतर वनाहर ए बैंड के कामयाब एल्बम ओशन एवेन्यू के टीम वन सिंगल के गोतगा

0: 누디 게 메거츠 데프 메거디 가르멘 코리아 겐다 에훈 테링게 호보 미야도 게 쇼 가니까 시트루 베베리 카골라 알레이스 미네
1: 살람
0: 알라이쿰 맨 투
1: 알레이쿰 살람
0: 코바 키네 키네 하다 후알
1: 랑갈 코바 사후 키네
0: 와라 랑갈에 와라 도스 콜라 푸도 미 베베리 베보니
1: 노네 아 베르 와 이게스 베베리
0: नो आने हैं ने वारा दो से जी हबरे दबरे नो आता
1: नो तिसाओ निवाई
0: शाहुआ दिमाग नो आने तो
1: नो आने आ
0: को बाकी है ने
1: इतने पहुँच दिमाग भी बाली भी वालों ने दुआ हक करने के
0: ए फाहूं
1: परावर्त कोल्ला फनी माली ये रे दुआ
0: ए फाहूं ही वनी मिबना हैं तंग कोले दो से जी
1: ಹೇಂದು
0: मैं हर दिन कामुदा का गोत करता मौसम में होती हैं वैसे या
1: दिन आवेनी वाला पन्ना तो बारे ही क्या होनु का दिन नुआना नहीं
0: है आ
1: अरे होनु का दिन भी मिल रहा
0: है होनु होनु का दिन भी मैं खामुन हूँ दानी है ना
1: तेरा करनो नहीं कुमे रे हाँ
0: होनु का दिन ओके को बाहें भी मैं कौन लवे ते जहाल दे मिशा हो मेरा डिगा ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಮಿಯ ಎಲ್ಲವದೋ ಈ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗೆ ತೊಮ್ಮೆ ಬಾದಾದ ನಿಗೆ ಮಿಲವೇ ಜಹಾಲ್ದೆ ನಾ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗೆ ರವೇ ಜಹಾಲ್ ದೀಫ ಮಸ್ಲೆನ್ನದು
1: ನಬ್ಬ
0: ಓಕೆ ಎಹಂ ವಿ ಮಾ ಹಂಗ ಲವ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಮ
1: ಲವ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಮ ಹಾಫೋ ಬೆಂಗಾಡೋ ಹಾಂತಿ ದೆ ದಿನ ಎಫ್ಎಂ ಟಿ ಮ
0: ಎನಿ ಮೋನಿ ಓಕೆ ಎಹಂ ವಿ ಮಾ ಲವ ಜಹಾಲ್ ದೆನ ಮೆ ವರಂ ಉಫಾವೆ ಜಿಂಗೆ ಬದ್ದಲ್ ವಿ ಮಾ ಕೇಲಾನ್ ಮೆ ಹಂಗೆ
1: ಆ
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ಮೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: मोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: Tea time request.

0: Alternative hier FM, nur die Ecke Megahertz.
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: lava. Mi adu ibada ni hajje lave ni lava mi kongisa. Mi kongisa be ganna lave kambunavi.
1: ती यूपे अफारी लाखा वेन कुरा है सामोन
0: वाह वाह बराबर इंगे सते का इंगे अनिका सितुर लावेंगे वाला इंगे